0: हो
1: कुश्ती तितरला राजा माजा गरा जमा जगो राजा
0: अरे वाला पट्टा
1: तांग मारू ना चिपट के ला जोड़ी दारा ला जोड़ी दारा ला जोड़ी दारा ला
0: हाय ना गबरो
1: अगर अगर बगा
0: अगर पर काय बगा
1: हाय पहल बार

0: जंगल है आधी रात है।
1: इतना क्यों याद आ रही हो? What do you expect? ट्रेन से कूद कर लौटा हूं?

0: सारी तनख्वाह खर्च कर डाली।
1: बची है पूरे 8 आने। धुन सुनाओ ना।
0: अरे नहीं

0: Now just imagine, एक लड़की नकचड़ी सी, थोड़ी सी पागल, you know, slightly mad like you.
1: अच्छा?
0: और एक लड़का.
1: और लड़का बड़ा समझदार है ना?
0: नहीं, लड़का तो उससे भी बड़ा पागल, वरना उससे प्यार कैसे करता? और एक दिन

0: See, you're a natural.
1: वो तो मैं हुई. अच्छा बाकी सब रिकॉर्डिंग में संभाल लेंगे. हाँ 100 लिए हैं.

तारों में चमक, फूलों में रंगत ना रहेगी। अरे कुछ भी ना रहेगा अगर मोहब्बत ना रहेगी।